और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमान में हैं और जो जमीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर वो जिसको खुदा चाहे। फिर दूसरी दफा फूंका जाएगा तो फौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे।

ये इसलिए कि जब तन्हा खुदा को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाता था तो तस्लीम कर लेते थे। तो हुक्म तो खुदा ही का है जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा है।

0: अब।
1: और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास निशानियां लेकर आए थे, तो जो वो लाए थे उससे तुम हमेशा शक ही में रहे, यहां तक कि जब वो फौत हो गए तो तुम कहने लगे कि खुदा इसके बाद कभी कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। इसी तरह खुदा उस शख्स को गुमराह कर देता है जो हद से निकल जाने वाला और शक करने वाला हो।

0: जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा, और जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत और वो साहिब ईमान भी होगा तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहां उनको बेशुमार रिज्क मिलेगा।
1: वया

और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं, और ना ईमान लाने वाले नेकुकार और ना बदकार बराबर हैं। हकीकत यह है कि तुम बहुत कम गौर करते हो। क़यामत तो आने वाली है, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते।

वही तो है जो जिलाता और मारता है, फिर जब वो कोई काम करना और किसी को पैदा करना चाहता है तो उससे कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। अलम

0: और तुम्हारे लिए उनमें और भी फायदे हैं, और इसलिए भी कि कहीं जाने की तुम्हारे दिलों में जो हाजत हो उन पर चढ़कर वहां पहुंच जाओ, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो।
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ
0: اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم خدا کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے
1: أَفَلَمْ

क्या उन लोगों ने जमीन में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ, हालांकि वो उनसे कहीं ज्यादा और ताकतवर और जमीन में निशानात बनाने के एतबार से बहुत बढ़कर थे, तो जो कुछ वो करते थे वो उनके कुछ काम ना आया।

फिर दो दिन में सात आसमान बनाए और हर आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा और हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से मुजयन किया और शैतानों से महफूज रखा। ये जबरदस्त और खबरदार के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं।

यहां तक कि जब उसके पास पहुंच जाएंगे तो उनके कान और आंखें और चमड़े यानी दूसरे आजा उनके खिलाफ उनके आमाल की शहादत देंगे।

और रात और दिन और सूरज और चांद उसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग न तो सूरज को सजदा करो और न चांद को, बल्कि खुदा ही को सजदा करो जिसने उन चीजों को पैदा किया है, अगर तुमको उसकी इबादत मंजूर है।

0: उम्मीद।
1: जो नेक काम करेगा तो अपने लिए, और जो बुरे करेगा तो उनका जरर उसी को होगा, और तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं।
0: फदक

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन खुश आमदीद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने वही की आमद का तज़किरा करते हुए फरमाया, अल्लाह की मखलूक में शायर और पागल से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई काबिल नफ़रत न था। मैं शिद्दत नफ़रत से इनकी तरफ देखने की ताब न रखता था। अब जो वही आई तो मैंने अपने जी में कहा, यह नाकारा है, यानी खुद आप शायर या पागल हैं। मेरे बारे में कुरैश ऐसी बात कभी ना कह सकेंगे। मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, वहाँ से अपने आप को नीचे लड़खड़ा दूंगा और अपना खात्मा कर लूँगा और हमेशा के लिए राहत पा जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं यही सोच लेकर निकला। जब बीच पहाड़ पहुँचा तो आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राइल हूँ। आप कहते हैं कि मैंने आसमान की तरफ अपना सर उठाया, देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में उफक के अंदर पांव जमाए खड़े हैं और कह रहे हैं, ए मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राइल हूँ। आप फरमाते हैं कि मैं वहीं ठहर कर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने लगा और इस शुगल ने मुझे मेरे इरादे से गाफिल कर दिया और अब मैं ना आगे जा रहा था ना पीछे, अलबत्ता अपना चेहरा आसमान के उफक में घुमा रहा था और इसके जिस कोशे पर भी मेरी नज़र पड़ती थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसी तरफ दिखाई देते थे। मैं मुसलसल खड़ा रहा, ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे, यहाँ तक कि खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मेरी तलाश में अपने कासिद भेजे और वो मक्का तक जाकर पलट आए, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए और मैं भी अपने अहले खाना की तरफ पलट आया और हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुँच कर उनकी रान के पास उन्हीं पर टेक लगा कर बैठ गया। इन्होंने कहा, अबुल कासिम आप कहाँ थे? बाखुदा मैंने आपकी तलाश में आदमी भेजे और वो मक्का तक जाकर वापस आ गए। इसके जवाब में मैंने जो कुछ देखा था इन्हें बता दिया। इन्होंने कहा, चचा के बेटे आप खुश हो जाइए और आप साबित कदम रहिए। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद वो वरका बिन नौफल के पास गई और इन्हें माजरा सुना दिया। इन्होंने कहा, कुद्दूस कुद्दूस, उस जात की कसम जिसके हाथ में वरका की जान है, इनके पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। ये इस उम्मत के नबी हैं, इनसे कहो साबित कदम रहें। इसके बाद हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को वरका की बात बताई। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हिरा में अपना क़याम पूरा कर लिया और मक्का तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से वरका ने मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ुबानी तफसीलात सुनकर कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। आपके पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। सामईन, यहां पर लेते हैं छोटा सा वक्फा। वक्फे के दौरान आप सुनेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वक्फे के बाद हाजिर होंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: Broadcasting from River City Studios.
1: Where knowledge is empowerment.
0: This is
2: Lunch 2.6.
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCB की दुनिया। हमारे साथ हैं सर राशिद हुसैन और सर हमजा अमीन। हम चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। अब उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए मेरे पास एक दो सवाल आते हैं जो मैं अपने मेहमानों से पूछूंगी। सो सर राशिद हुसैन एंड सर हमजा अमीन, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच लैंग्वेज इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ यंग प्रोफेशनल टू लर्न?
4: In my opinion, both languages are important, but based on the data or generally what we observe, English is a more widespread language. So I think it is fundamentally required that a student must learn English language, not only learn, rather he or she must be very proficient in that. However, considering the importance of Chinese, that is also significant because the future is with China, considering its boom in economy.
3: मेरा सवाल सर हमजा अमीन से बिल्कुल सेम है कि आपको क्या लगता है और आप अपना इसके बारे में क्या ओपिनियन देंगे?
5: मैं सर राशिद की ही बात से इसको शुरू करूंगा। जैसा उन्होंने पहले बताया कि इंग्लिश इज अ वाइड स्प्रेड लैंग्वेज, हम इंग्लिश की हकीकत को तो नहीं जुटला सकते, बट इन रिसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखा है कि यूरोप और अमेरिका स्पेसिफिकली एंड इंग्लैंड, पाकिस्तानीज आर नॉट गेटिंग इनफ वीजास इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इवन। बट वी हैव सीन अ शिफ्ट के आप चाइना, क्योंकि हमारे चाइना के साथ बरादराना ताल्लुकात भी हैं, चाइना एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इकॉनमी भी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया की हर 10वीं चीज जो है वो चाइनीज है। जब एक मुल्क आपको इतनी सारी प्रोडक्शन दे रहा है, उसकी इकॉनमी स्ट्रांग है, वो पूरी दुनिया की इकॉनमी का 5वां हिस्सा एक ही मुल्क दे रहा है, तो हमें इंग्लिश के साथ साथ अभी ये देखना होगा कि हमारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं। तो बींग पाकिस्तानी, इस टाइम पे हमारे पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज चाइना की ही हैं। हमें वीज़ा प्रोसेसिंग आसानी से मिल जाती है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ग्रोइंग इकॉनमी है, वो ग्रोइंग इकॉनमी टेक्नोलॉजी की सेंस में है, इंडस्ट्री की सेंस में है, मेडिसिन की सेंस में है, एंड मैनी मोर थिंग्स। और हम उन्हीं के ही सबसे बड़े इम्पोर्टर भी हैं इट्सेल्फ। तो मेरे ख्याल में क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज को बचपन से ही लेके चलते आ रहे हैं बींग अ कॉलोनाइज्ड नेशन, लेकिन अब हमें अपना रुझान इंग्लिश से बहुत ज्यादा कम करके चाइनीज की तरफ करना पड़ेगा।
3: टू स्पाइस अप द थिंग्स अ लिटिल बिट मोर, आई एम गोना आस्क सम बोल्ड क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ ऑफ यू। सो फॉर सर राशिद हुसैन, द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस, मूवीज, म्यूजिक, लिटरेचर, व्हिच लैंग्वेज इज विनिंग द सॉफ्ट पावर गेम?
4: वेल, आई थिंक इंग्लिश, बिकॉज इट हैज रिलेटिवली लॉन्गर हिस्ट्री। दुनिया की कोई भी अच्छी किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो वो अंग्रेज़ी में होगी, या दुनिया की कोई भी अच्छी किताब जो दूसरी किसी भी ज़बान में लिखी जाए, राइटर या पब्लिशर हमेशा चाहता है कि वो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हो, क्योंकि अंग्रेज़ी में कारीन यानी कि पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और उनकी जो व्यूअरशिप है वो भी हमें अंग्रेज़ी में नज़र आती है, जैसा कि प्राइम बाय अमेज़न या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह। इवन यूट्यूब पर भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट वॉल्यूम वाइज वो अंग्रेज़ी में नज़र आता है। तो इस तरह से एक जो नैरेटिव कंस्ट्रक्शन है, या जिसको डिस्कोर्स में हम ये कहते हैं कि रियलिटी कंस्ट्रक्ट की जा रही है, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस हमें अंग्रेजी का नजर आता है। इवन वो ममालिक जहां पर अंग्रेजी जबान सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो भी मजबूरी की वजह से, वहां पर भी एड्स पर, पैनाफ्लेक्सेस पर, साइन बोर्ड्स पर हम देखते हैं कि अंग्रेजी जबान में या फिर इवन अंग्रेजी लेटर्स को यूज करते हुए रोमन लैंग्वेज में जुमले लिखे जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इवन जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं या दानिश्वर हैं, फिलोसफर्स हैं, जिनका असर पूरी दुनिया पर है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में हो, सोशल साइंसेस की दूसरी फील्ड्स हो, हमें नज़र आता है कि बहुत बड़े लोग अब भी वो हैं, या वो लोग जो लाइमलाइट में हैं, उनका ताल्लुक उन ममालिक से है जहाँ पर अंग्रेज़ी बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है।
3: थैंक यू सर राशिद फॉर शेयरिंग योर ओपिनियन। But now I will like to ask Sir Hamza to share his opinion, and for him I have a question, which is, which language is more difficult for foreigners to learn, and does that affect the global spread? And we have heard a myth that Chinese language is very difficult to learn. Do you believe in this?
5: again, I would second Sir Rashid's opinion that as he mentioned that English language has worked a lot on the widespread of English language, because it is the language of dictionary, it is the language of like syntax, it is the language of books, and there are a huge number of books around the world being translated from other languages into English. And one reason for that, if we see China, like hum agar dekhte hain, to China is a Far East country. And it is totally separated from the Western world. One thing. Another thing, when we learn a new language, we start it from the very basic units. And if we see English has only 26 basic units, and according to the data I have, Chinese has 6,000 expressions. So technically, it is difficult to learn Chinese. It's a fact. We cannot ignore or we cannot deny from this fact. तो जैसा कि इंग्लिश ने अपने ऊपर काम किया, उन्होंने उसको आसान किया, और लिंग्विस्टिक की टर्म में हम एक चीज़ बोलते हैं बोरोइंग, किसी दूसरी जुबान के अल्फाज अपने अंदर जम कर लेना या जज़ब कर लेना, जो कि सलाहियत अंग्रेजी में दुनिया में सारी जुबानों से ज़्यादा है, लेकिन चाइनीज़ में ये वाली सलाहियत नहीं है. तो चाइना को इस पे काम करना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा या सूदमंद यही है कि हम फिलहाल अंग्रेज़ी में तो थोड़े से माहिर हैं ही, तो साथ में चाइनीज़ को सीखने की कोशिश करें.
3: बहुत शुक्रिया सर राशिद हुसैन और सर हमजा अमीन का अपने ख्यालात को बताने के लिए, और हमारे लिसनर्स का भी बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. अब वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, थोड़ी देर के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: ये है पाकिस्तान की आवाज यूसीपी रेडियो FM 92.6
1: सूफी सिंग्स हु दैट विच इज दैट विच वाज दैट विच विल बी
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز ایک نئی سوچ एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
3: जब मिलती है लगन
4: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया
5: यूसीपी की दुनिया
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6
3: सुनते रहिए

0: कि जब बॉल में शाइनिंग होती है तो क्यों फास्ट बॉलर्स को दिया जाता है। आजकल अगरचे वो नहीं रहा तरीका T20 के आने की बिना पे नए रूल्स एंड नई रिवायात बन गई हैं, लेकिन जो असल में क्रिकेट की रूह है ना, जिस तरह कहते हैं ना मौसीकी की रूह क्लासिकल म्यूजिक है, इस तरह क्रिकेट की रूह जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। लेकिन लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, टेक्नोलॉजी ने इतनी फलांगे मारी कि जो रिवायात थी वो दम तोड़ती नजर आती हैं हर जगह पे, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे कोई फंक्शन हो, खानदानी हो या आवाम का हो, सियासत हो, अदालत हो, हर जगह आपको टेक्नोलॉजी बराजमान होती नजर आती है। लीजिए मोहतरम सामईन, एक वक्फे की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत से अछूते और दिलचस्प पहलू हैं जो मैंने आपके गोश गुजार करने हैं।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं, इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: इन सदाए लाहौर है, इन सदाए UCPS, लुत्फान गोश बदहीद FM 92.6 जहाने।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

0: Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya. UCP ki duniya.
1: देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6।

0: number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya. UCP ki duniya.
1: देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे, देखूं तो सारा शहर शनासा दिखाई दे।

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Do you want

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

ये है पाकिस्तान की आवाज UCP रेडियो FM 92.6। लेट्स गेट स्ट्रेस फ्री, ट्यून इन टू FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: कंट्रोल, आवाज़ आ रही है? सच बोलूं, दिल भी थोड़ा कांप रहा है।
1: आवाज भी और
2: धड़कन भी सन्न हो गया।
0: The nets fly over and out.

जिंदगी को जीने से, जिंदगी को पाने तक। उस कबा के उठने से उस कबा के खुलने तक, आंख के तमाजत से होंठ की हरारत तक, गाल पे लगा गाजा होंठ पे लगी लाली, खुद ब खुद पिघलने थे, खुद ब खुद पिघलने से खुद ब खुद पिघलने तक, खुद ब खुद पिघलने थे, हाथ की लकीरों से रथ जगों के तीरों से, और आगे जाने दे, और आगे जाने से।

ए सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

मौसीकी के सुरोरताल सुरोरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया और हमारे साथ हैं सर राशिद हुसैन, सर हमजा अमीन। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं एक जनरलाइज सा क्वेश्चन करूंगी। अगर आपको अपनी ज़ुबान के बारे में एक सेंटेंस बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे? पहले हम सर हमजा से पूछ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे।
2: I would say it's the language of future. I won't say it's the contemporary language, but it is the language of future.
1: Okay. And for Sir Rashid Hussain, what do you have to say?
3: English language is a tool currently for companies, for countries, for academia, because it is being used for not only for exploitation, for so many positive things as well. So I think the thing which is very dominant cannot be inevitable.
1: अच्छा, अभी हम बात एक डिस्कस कर रहे थे कि आपको क्या लगता है एकेडमिया में फिलहाल किस लैंग्वेज का ज़्यादा रोल है और वो किस तरह से प्ले किया जा रहा है? आप दोनों थोड़ा सा अपने बारे में ओपिनियंस बताएं।
2: एकेडमिया में पिछले एक सेंचुरी या मोर देन अ सेंचुरी अगर हम देखें तो दो वजह से इंग्लिश लैंग्वेज ही डोमिनेंट है। बिकॉज एक तो कॉलोनाइजेशन की वजह से, तो जो कॉलोनाइजर्स थे वो कॉलोनाइज्ड को स्कॉलरशिप्स दे के या अपने यहाँ जॉब्स दे के तो अपना एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करते थे। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर एज वेल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन चूंकि अभी वो रोल जो है वो कदरे कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इमर्जेंस। लैंग्वेज का अपना तो एक रोल है ही, लेकिन सोशल मीडिया पे जो अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है या अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसकी वजह से एक कॉमन लेमैन को भी ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि हमारा सिर्फ लैंग्वेज सीखना ही मकसद नहीं था या एक ही लैंग्वेज जो है वही कोई डिवाइन लैंग्वेज नहीं है। अभी हमारा जो टिल्ट है वो किसी भी तरफ हो सकता है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हमें किस तरफ से बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वो कुछ चीज़ें मुश्किल तो रहेंगी हमारे लिए थोड़ा, हमारे जैसी पॉलिटिकली इनस्टेबल इकोनॉमीज़ की वजह से, बट हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दोनों तरफ से मिलेंगे क्योंकि हम इसी तरह से ही चल रहे हैं।
3: मुझे ये लगता है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जितनी वाइड स्प्रेड है उसकी इम्पोर्टेंस इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि हम टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों को एल्गोरिदम ड्राइव कर रहा है और उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक अंग्रेज़ी ज़ुबान के साथ। इवन वो बच्चे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इनरोल्ड हैं या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, जब वो प्रोग्रामिंग या स्पेसिफिकली कोडिंग सीखते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान पर महारत रखते हों या कम अज़ कम उसकी बेसिक्स जानते हों। तो इसको अगर हम पॉलिटिकली लिंक करें चीज़ों को, तो वो ये बनता है कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनते हैं। इवन पॉलिटिकल कैंपेन्स, इलेक्शन कैंपेन्स सोशल मीडिया पर रन की जाती हैं और वहाँ पर जो नैरेटिव बनता है वो लोगों को ड्राइव करता है या एक राय कायम करने पर मजबूर करता है। तो सारी दुनिया एक तरफ एक कंटेंट यूज़ कर रही है जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में है और वो मुमालिक उसको ड्राइव कर रहे हैं जो कि अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने वाले हैं और समहाउ एक ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर भी कंसिडर किए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिर्फ इस एक पहलू में चाइना ज़रा सा पीछे नज़र आता है, क्योंकि चाइना का अपना सिस्टम है, सर्च इंजन अपना है, सोशल मीडिया अपना है, उसके ज़रिए से वो अपनी आवाम का नैरेटिव या उनकी ओपिनियन तो शेप अप कर पाते हैं, मगर दुनिया पर उसका क्या असर है वो इस हवाले से अभी इस रेस में थोड़ा सा पीछे हैं। मगर वो इसको कंपनसेट करने के लिए इकॉनमी के हवाले से मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ यूज़

0: यूज़ कर रहे हैं और एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर सामने आए हैं।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आप दोनों के ओपिनियन से इत्तेफाक करती हूँ। आपको भी पता है कि दुनिया के अंदर तीन चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा मेन फोकस होता है और इनका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे होता है, एक टेक्नोलॉजी, एक एकेडमिया और एक इकोनॉमी। एकेडमिया के पॉइंट पे तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, आपको क्या लगता है कि दोनों ज़बानों का टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किरदार है?
2: ओके, सो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, लैंग्वेज का एकेडमिया में रोल किस तरह से है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। वो आप मोबाइल फ़ोन की सेंस में ले लें, लैपटॉप्स की सेंस में ले लें, आप एयर कंडीशनर की सेंस में ले लें। आपने पिछले ही दिनों सुना होगा कि BYD सरपासेस टेस्ला। तो चाइना एक बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है इन सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इस शिफ्ट को भी देखें तो लैंग्वेज में तो चाइना ने खुद को बहुत देर पीछे रखा, लेकिन अभी AI और ChatGPT और इन चीज़ों की इमर्जेंस की वजह से चीज़ें कदरे आसान हो गई हैं, ट्रांसलेशन आसान हो गई है, तो उनको अब कम्युनिकेट करना आसान हो गया है दूसरी दुनिया के साथ। उसके बाद चूंकि चाइना दुनिया का पांचवा हिस्सा आबादी भी है, एक ही मुल्क, तो सारे एशिया की प्रोडक्शन आप iPhones की देख लें, आप HP की देख लें, आप डेल के लैपटॉप्स की देख लें, तो एशिया की सारी प्रोडक्शन वो कंपनियां भी आके चाइना में ही करती हैं और फिर चाइना से इस पूरे रीजन में डिलीवर करती हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से तो वो एक मुल्क इटसेल्फ एक जायंट है। सो उसके कुछ नुकसान भी हैं हमारे जैसे छोटे मुल्कों को ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में, बट वो टेक जायंट हैं तो वो उस पर डोमिनेट कर रहे हैं अगले आने वाले कुछ सालों में मजीद।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और हम थर्ड फैक्टर पे भी बात कर लेते हैं जो कि इकोनॉमिक फैक्टर है। आपको क्या लगता है चाइना और चाइना की ज़बान और इंग्लिश ज़बान, इन दोनों का क्या इकोनॉमिक लेवल पे इफेक्ट है?
2: ओके, इसी को अगर हम लेके चलें तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने UNO, IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए ताकि वो डिफरेंट छोटे ममालिक को एड दे सकें या उन पे अपनी डोमिनेंस बरकरार रख सकें। लेकिन अगर आप करंट डेटा के मुताबिक देखें तो अमेरिका इटसेल्फ चाइना का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क है। और उसके बाद हम पाकिस्तानी CPAC के थ्रू आ जाएं या आप डिफरेंट और प्रोग्राम्स के थ्रू आ जाएं, हम चाइना से बहुत सारे पैसे कर्जों, एड्स या डिफरेंट मेमोरेंडम्स के थ्रू पैसे ले रहे हैं ताकि हम उनके साथ बने रहें। तो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में इस टाइम पे अगर आप देखें तो चाइना का, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, 17.6% GDP टोटल वर्ल्ड GDP का शेयर है। तो हम उनकी इस इम्पोर्टेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक रीसेंट डेवलपमेंट में जिसमें कि दुनिया ने देखा कि पहले बोइंग की डोमिनेंस थी जो कि एक अमेरिकन कंपनी है एयर एविएशन में, तो वो डोमिनेंस चाइना ने पिछले साल में ख़त्म कर दी है। चाइना का अपना एक तैयारा C919 ऑपरेशनल हो गया, उस वजह से बोइंग को अपने तैयारे वापस लेने पड़ रहे हैं। और उसमें एक वजह तो टैरिफ्स भी हैं जो इम्पोज किए गए, और दूसरी वजह यह है कि चाइना चूंकि एक इमरजेंस पावर थी तो वो अपनी ही इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, उनका जो डॉलर आउटफ्लो था वो रोकने के लिए उन्होंने अपनी सारी प्रोडक्शन शुरू कर दी, वो बेशक गाड़ियों में हो, फोन्स में हो या जहाज़ों में।
1: सर राशिद हुसैन से मैं पूछना चाहूँगी कि उन्होंने टेक्नोलॉजी, एकेडमिया और इकोनॉमी तीनों के बारे में राय सुनी है, अब वो अपनी राय इसके बारे में क्या देना चाहेंगे?
0: इसके बारे में मैं अपनी राय का इजहार इस हवाले से करूँगा कि रिसेंटली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडल लैंग्वेजेस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर हमारी फ्रेटर्निटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी राय का इजहार जो किया वही मेरी राय है और मैं उस राय को सेकंड करता हूँ। वो ये है कि AI के इमरजेंस से पहले लैंग्वेज ऑफ एकेडेमिया और इसकी इंपॉर्टेंस और बतौर सब्जेक्ट्स ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में या तालीमी इदारों में पढ़ाई जाती थी, जबकि वो काम अब AI बहुत आसानी से चंद सेकंड्स में करके दे रहे हैं। अब इसके खिलाफ एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि क्या वो एथिकल है या नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि बहुत सारे जर्नल्स ने, पब्लिशर्स ने इस हकीकत को तस्लीम किया है कि AI का यूज़ एक हद तक बिल्कुल ठीक बात है। और अगर हम इसका कंपैरिजन पास्ट के साथ करते हैं तो पहले भी प्रोफेसर्स के पास रिसर्च असिस्टेंट्स हुआ करते थे, प्रोफेसर सिर्फ उनको डिक्टेट किया करते थे, गाइड किया करते थे, और वो तहरीर असल में रिसर्च असिस्टेंट की तरफ से हुआ करती थी। तो मेरे ख्याल से इस हद तक तो अंग्रेज़ी जो है वो थोड़ी सी, यानी उसकी रिक्वायरमेंट्स या उसको सीखने के हवाले से जो तरद्दुद स्टूडेंट्स की तरफ से था वो थोड़ी तब्दील हुई है। جہاں تک اکانومی کی بات ہے اس لحاظ سے میں سر حمزہ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ چائنا جو ہے وہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے اور ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں انگریزی کی امپورٹنس اس حوالے سے کم ہو سکتی ہے. آخری بات وہ یہ کہ لینگویج جو ہے ٹیکنالوجی کی ابھی بھی وہ انگریزی ہی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انگریزی کو اس حوالے سے ذرا سا بھی اگنور کیا گیا یا ایویٹیبل بنایا گیا اس کے امیجیٹ اور فار فلنگ ریپرکشنز ہو سکتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے یا کسی بھی ادارے یا ملک کے لیے.
1: بہت شکریہ سر راشد حسین اور سر حمزہ امین اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. آج کا ہمارا ٹاپک تھا امپورٹنس آف چائنیز اینڈ انگلش لینگویج. ہمارے ساتھ تھے سر راشد حسین اور سر حمزہ امین. بہت شکریہ سر راشد حسین اور سر حمزہ امین اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. آج کا ہمارا ٹاپک تھا انگلش اور چائنیز لینگویج کی امپورٹنس کے بارے میں. ہمارے ساتھ ہے سر راشد حسین اور سر حمزہ امین. آگے بھی ہم اسی طرح کے معلوماتی پروگرام لاتے رہیں گے. ابھی ہمیں اجازت دیجیے, سنتے رہیے گا FM 92.6 UCP کی دنیا. اللہ حافظ.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: دو پتے پتجھڑ کے पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.